0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवद गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

0: ओशो, जिनका मूल नाम चंद्रमोहन जैन था, एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और रहस्यवादी थे। उन्होंने ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता और सक्रिय ध्यान, जिसे कहा जाता है एक्टिव मेडिटेशन, उस पर जोर दिया। वे पारंपरिक धर्मों और रूढ़ियों के आलोचक थे और लोगों को आत्म जागरूकता, वर्तमान में जीने और निर्भीक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। ओशो के बारे में कुछ खास बातें। उनका प्रारंभिक जीवन। जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। नाम उन्हें आचार्य रजनीश, भगवान श्री रजनीश और अंततः ओशो के नाम से जाना गया। शिक्षा और पेशा। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और जबलपुर विश्वविद्यालय में लेक्चरर रहे। दर्शन। ओशो ने जीवन को उत्सव की तरह जीने, पुरानी परंपराओं को छोड़ने और स्व अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित किया। वे ओशो निसर्गा और ओशो मेडिटेशन रिसोर्ट जैसे ध्यान केंद्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ध्यान विधियां। उन्होंने आधुनिक मनुष्यों के लिए डायनेमिक ध्यान यानी डायनेमिक मेडिटेशन जैसी सक्रिय ध्यान विधियां विकसित की, जो तनाव से मुक्ति में मदद करती हैं। साहित्य। उनके प्रवचनों को हजारों किताबों में संकलित किया गया है, जो हिंदी में भी व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, जैसे ध्यान प्रथम और अंतिम मुक्ति और किताबें जो बदल सकती हैं जीवन। ये है ओशो के बारे में, भगवान रजनीश के बारे में संक्षिप्त परिचय। आइए अब सुनते हैं भगवान रजनीश को, अर्थात ओशो को। Why do complications arise in human life? अर्थात मानव जीवन में उलझने क्यों आती हैं? इसी संदर्भ में आइए सुनते हैं आप क्या कहते हैं।
1: भगवान, मैं आपको वर्षों से सुन रहा हूं, लंबे अरसे से मैं आपके पास हूं। मैंने समय समय पर आपसे कई भिन्न भिन्न वक्तव्य परस्पर विरोधी वक्तव्य सुने, लेकिन उनके संबंध में कहीं कोई प्रश्न मेरे मन में नहीं उठा, और उनके बावजूद आप मेरी दृष्टि में और मेरे हृदय में सदा सर्वदा एक और अखंड बने रहे। इस पर कुछ प्रकाश डालने की अनुकंपा करें। मेरे पास दो ढंग से हो सकते हो, एक तो विचार से, बुद्धि से, और एक हृदय से और भाव से। बुद्धि और विचार से अगर मेरे पास हो तो बड़ी अड़चन होगी, रोज रोज विरोधी वक्तव्य होंगे, रोज रोज तुम्हें सुलझाना पड़ेगा, फिर भी तुम सुलझा ना पाओगे। बुद्धि कभी कुछ सुलझा ही नहीं पाती। जहां सीधी सीधी बात हो वहां भी बुद्धि उलझा लेती, तो मेरी बातें तो बड़ी उलझी। जहां सब साफ सुथरा हो वहां भी बुद्धि समस्याएं खड़ी कर लेती। तो मैं तो उन रास्तों की बात कर रहा हूं जो बड़े धुंधलके से भरे। एक ही रास्ते की बात हो तो भी बुद्धि विरोध खोज लेती। ये तो अनंत रास्तों की बातें, विरोध ही विरोध मिलेगा। ऐसा मैंने कोई वक्तव्य नहीं दिया है जिसका हजार बार खंडन न किया हो। तो यदि बुद्धि से मेरे पास हो तो दो ही उपाय हैं, या तो तुम पागल हो जाओगे या बुद्धि को छोड़ दोगे या भाग जाओगे। बुद्धि को बचानी है तो मुझे छोड़ना पड़े, मुझे बचाना है तो बुद्धि छोड़नी पड़े, और कोई सौदा और कोई समझौता नहीं हो सकता। इसलिए बहुत से बुद्धिवादी मेरे पास आते हैं, हट जाते हैं। उनको अपनी बुद्धि ज्यादा मूल्यवान मालूम होती है, वो उनका निर्णय। उन्हें मैं बहुत बुद्धिमान नहीं कहता, क्योंकि वे उसी बुद्धि को पकड़ रहे हैं जिस बुद्धि से कुछ भी नहीं पाया। इधर मैंने एक मौका दिया था निर्बुद्धि होने का, एक द्वार खोला था, अनजान अपरिचित, हिम्मत होती और दो कदम चल लेते तो कुछ पा जाते, कोई झलक मिलती, कोई जीवन का स्वाद उतरता। लेकिन घबरा के उन्होंने अपनी बुद्धि की पोटली बांध ली, भाग खड़े हुए। उसी को बचा लिया जिसके सहारे कुछ भी नहीं पाया था, इसलिए मैं उन्हें बहुत बुद्धिमान नहीं कहता। जो सच में बुद्धिमान है उन्हें मेरी बातों में विरोधाभास दिखाई पड़ेंगे, तो भी मेरी बातों का रस विरोधाभासों के बावजूद उनके हृदय को आंदोलित करता रहेगा। एक ना एक दिन हिम्मत करके वे अंधेरे में मेरे साथ कदम उठा के देखेंगे, उसी दिन उनके भीतर क्रांति हो जाएगी। उनकी चेतना की धारा बुद्धि से छिटक के हृदय के मार्ग पर बहने लगेगी, वही एकमात्र क्रांति है। तो जो बुद्धि से मेरे पास आए हैं, या तो रुकना है तो बुद्धि खोनी पड़ेगी। वही मूल्य चुकाना पड़ेगा। अपनी बुद्धि बचानी है तो मुझे खोना पड़ेगा, फिर तुम्हारी मर्जी। दूसरा जो वर्ग है, जो हृदय के कारण मेरे पास आया है, जो मुझे सुनकर नहीं, मुझे सोचकर नहीं, मुझे देखकर, मुझे अनुभव कर मेरे पास आया है, जिसने धीरे धीरे मेरे साथ एक प्रेम का नाता बनाया है, वो नाता बौद्धिक नहीं। उस नाते में मैं क्या कहता हूं कुछ लेना देना नहीं, मेरी मान्यताएं क्या हैं उनका कोई विचार नहीं, मैं क्या हूं वही मूल्यवान है। उनके ऊपर मैं कितने ही विरोधी वक्तव्य देता चला जाऊं कोई अंतर न पड़ेगा। उन्होंने अपने भीतर से जो मेरा साथ जोड़ा है वो अविरोध का है, हृदय का है। बुद्धि सोचती है कौन सी बात ठीक कौन सी बात गलत, बुद्धि सोचती है कौन सी बात किस बात के विपरीत पड़ रही है, बुद्धि सोचती है कल मैंने क्या कहा था आज मैं क्या कह रहा हूं। बुद्धि हिसाब रखती है। हृदय तो क्षण क्षण जीता है, अतीत को जोड़ के नहीं चलता। मैंने कल क्या कहा था उसे प्रयोजन नहीं, मैं कल क्या था उससे प्रयोजन, और जो मैं कल था वही मैं आज हूं। मेरे वक्तव्य बदलते जाएं, मेरे शब्द बदलते जाएं, मेरा शून्य वही का वही है। कभी मैंने तुमसे मंदिर में जाके प्रार्थना करने को कहा है, कभी सब मूर्तियों को छोड़कर त्याग कर मस्जिद में नमाज पढ़ने को कहा है, कभी भगवान के रस में डूबकर नाचने को कहा है, मदमस्त होने को कहा है, कभी भगवान है ही नहीं सब सहारे छोड़ देने को, आत्मखोज के लिए कहा। स्वभावतः ये वक्तव्य विरोधी है, लेकिन इन सब विरोधों के भीतर मैं हूं। जिसने तुमसे पूजा के लिए कहा था उसी ने तुमसे पूजा छोड़ने को कहा है, और जिसलिए तुमसे पूजा करने को कहा था उसी लिए तुमको पूजा छोड़ने को कहा है। मैं वही हूं और मेरा प्रयोजन वही है। अगर तुमने प्रेम से मुझसे संबंध जोड़ा तो तुम देख पाओगे, तुम्हें यह स्पष्ट होगा, तब तुम जन्मों जन्मों मेरे साथ रहो और तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न ना उठेगा। ये शुभ है, ये महिमापूर्ण है। प्रेम ने कभी कोई प्रश्न जाना ही नहीं। हाँ, कभी जिज्ञासा उठ सकती है, जिज्ञासा बड़ी और बात है, इस फर्क को भी ख्याल में ले लेना चाहिए। प्रश्न तो उठता है तुम्हारी जानकारी से, तुम कुछ जानते हो उससे प्रश्न खड़ा होता है। जिज्ञासा उठती है अज्ञान से, तुम नहीं जानते इसलिए प्रश्न खड़ा होता है। तुमने वेद पढ़ा, फिर मैंने कुछ कहा, और अगर तुमने जो वेद में पढ़ा है उसके विपरीत पढ़ा तो प्रश्न उठेगा। तुमने गीता पढ़ी और मैंने कुछ कहा और तुम्हारी पढ़ी गई गीता से मेल न खाया तो प्रश्न उठेगा। प्रश्न तुम्हारे ज्ञान से उठता है, तुम्हारी सूचना से, जानकारी से उठता है। प्रश्न का केवल इतना अर्थ है कि तुम्हारा ज्ञान डगमगाया, तुम उसे स्थिर करना चाहते हो, तुम बेचैनी में पड़ गए, असुरक्षित हो गए, सब साफ सुथरा मालूम होता था, भ्रम खड़ा हो गया, मैंने कुछ कहा उसने तुम्हें डवाडोल किया, तुम स्थिर होना चाहते हो, तुम प्रश्न पूछते हो इस पार या उस पार। या तो मैं तुम्हें बिल्कुल ही गलत सिद्ध कर दूं ताकि तुम मुझे ठीक मान लो, और या मैं गलत सिद्ध हो जाऊं ताकि तुम अपनी ठीक को ठीक माने चले जाओ। प्रश्न तुम्हारे ज्ञान में बाधा पड़ने से उत्पन्न होता है। जिज्ञासा अज्ञान से पैदा होती, छोटा बच्चा पूछता है तब जिज्ञासा है, उसे कुछ पता नहीं, वो पूछता है संसार को किसने बनाया। एक हिंदू पूछता है संसार को किसने बनाया, वो जान के ही पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि मैं तो मानता हूं कि ईश्वर ने बनाया, तुम भी मानते हो या नहीं, किसने बनाया संसार को। उसके प्रश्न के पीछे जानकारी खड़ी है। एक छोटा बच्चा पूछता है किसने बनाया, उसके प्रश्न के पीछे कोई जानकारी नहीं है, विराट जिज्ञासा है। वो कुछ मान के नहीं पूछ रहा है, इसलिए उसके पूछने में एक निर्दोष भाव है, वो जानना चाहता है इसलिए पूछ रहा है। तुम जानते ही हो इसलिए पूछते हो। तो तुम जब भी पूछते हो तुम्हारा प्रश्न एक तरह का विवाद है। जिन्होंने मुझसे प्रेम किया है उनके प्रश्न तो नहीं उठेंगे, जिज्ञासाएं होंगी। जिज्ञासा सत्य की खोज पर बड़ी जरूरी है। प्रश्न विवाद करना हो, शास्त्रार्थ करना हो तो काम के, सत्य को खोजना हो तो बाधाएं। पूछा है, वर्षों से आपको सुन रहा हूं, लंबे अरसे से आपके पास हूं, इससे कोई फर्क ना पड़ेगा। तुम जितनी ज्यादा देर मेरे पास रह जाओगे उतना ही लगेगा कम रहे। ये कुछ प्रेम ऐसा है कि बढ़ने ही वाला है, घटने वाला नहीं। जो घट जाए वो भी कोई प्रेम। ये चांद कुछ ऐसा है कि बढ़ता ही चला जाता है। पूर्णिमा कभी आती नहीं, बस आती मालूम होती। प्रेम के रास्ते की यही खूबी है, पांव बढ़ते लक्ष्य उनके साथ बढ़ता, पांव बढ़ते लक्ष्य उनके साथ बढ़ता, और पल को भी नहीं यह क्रम ठहरता। पांव मंजिल पर नहीं पड़ता किसी का, प्यार से प्रिय जी नहीं भरता किसी का। जिससे जी भर जाए वो प्रेम नहीं, जिससे जी भरे ही ना वही प्रेम है। भर भर के ना भरे, बार बार तुम लगो कि अब लबालब हुए, अब लबालब हुए, जब झांको तब पांव की अभी और जगह रह गई, अभी और भरना है। मंजिल सदा पास आती लगती है, हाथ बढ़ाया मिल जाएगी, पर पांव मंजिल पर कभी नहीं पड़ता। तुम जितनी ज्यादा देर मेरे पास रह जाओगे उतना ही लगेगा कम रहे। समय सिकुड़ता जाएगा, प्रेम के सामने समय छोटा है, समय कैसे बीत जाता है प्रेम की घड़ी में पता नहीं चलता। तुमने कभी ख्याल किया, तुम प्रेमी के पास बैठे हो, घंटों बीत जाते हैं, ऐसा लगता है पल ही बीते, और तुम किसी दुश्मन के पास बैठे हो, पल बीतते हैं और ऐसा लगता है घड़ी मानो ठहर गई, घंटों बीत गए। दुख में समय लंबा हो जाता है, सुख में समय छोटा हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं नरक अनंत है, दुख में समय लंबा हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं स्वर्ग क्षणभंगुर है, सुख में समय छोटा हो जाता है, आया नहीं गया नहीं। और आनंद में तो समय परिपूर्ण शून्य हो जाता है, इसलिए आनंद को कालातीत कहा है। फिर से तुम सोचना कितने समय तुम मेरे पास रहे, बहुत थोड़ा मालूम पड़ेगा। अगर गौर से देखोगे तो शायद तिरोहित ही हो जाएगा कि रहे ही कहां, अभी आए थे, क्षण भी नहीं बीता, या क्षण कहना भी ठीक नहीं, कुछ बीतता नहीं मालूम पड़ता, कुछ ठहरा हुआ मालूम।

0: कदम बढ़ते हैं। इसलिए तुम जितनी ज्यादा देर रह जाओगे उतना ही लगेगा कम रहे कम रहे कम रहे। ये जल कुछ ऐसा है कि पीने से प्यास बढ़ती। जिस प्रेम से प्यास बुझ जाए वो प्रेम नहीं, जिस प्रेम से प्यास अनंत होकर जलने लगे, प्रखर होकर जलने लगे, वही प्रेम प्रेम है। और वही प्रेम प्रार्थना बनेगा और वही प्रेम तुम्हें एक दिन परमात्मा तक ले जाएगा। प्यास जब ऐसी हो जाए कि तुम मिट ही जाओ और प्यास ही बचे, बस प्यास बचे, तुम ना बचो, एक व्याकुलता बचे, एक विरह बचे, एक उत्तप्त अभीप्सा बचे, तुम खो ही जाओ, प्यासा बचे ही ना, क्योंकि प्यासे के कारण भी प्यास पूरी नहीं हो पाती। कुछ शक्ति प्यासे को मिलती, कुछ प्यास को मिलती, बट जाती। जब प्यास ही प्यास होती है और प्यासे के पास अपने को बचाने की शक्ति भी नहीं बचती, तभी प्यास प्रार्थना हो जाती, तभी प्यास परमात्मा हो जाती। यहां तुम्हें मैं प्यास ही सिखा रहा हूं, यहां तुम्हें मैं इस बात के लिए तैयार कर रहा हूं ताकि तुम अनंत प्यास के मालिक हो जाओ। भरने की जल्दी थोड़ा सोचो। साधारण प्यास को आदमी मिटा लेना चाहता है क्योंकि प्यास से पीड़ित है। परमात्मा की प्यास को मिटा थोड़ी लेना चाहता है क्योंकि प्यास से पीड़ित थोड़ी है। इसलिए नारद कहते हैं विरहा आसक्ति, विरह में भी आसक्ति हो जाती, रस आने लगता है प्यास में भी। अगर तुम ठीक से समझो तो ऐसा कहने दो मुझे कि प्यास के कारण थोड़ी भक्त परमात्मा को मांगता है, परमात्मा को मांगता है ताकि प्यास बढ़ती जाए। परमात्मा प्यास से गौण हो जाए, भक्ति भगवान से महत्वपूर्ण हो जाए। क्योंकि जब तक भक्ति साधन है तब तक तो तुम छुटकारा चाहोगे कि जल्दी पूरा हो, रास्ता पूरा हो, मंजिल आए। जब भक्ति साध्य हो जाती, यहां तुम्हें मैं ऐसी ही प्यास की तरफ ले चला हूं। तो कितना समय तुम रहे ये बात बड़ी सोच लेने जैसी है, ज्यादा समय रहे नहीं। ये प्रश्न पूछा है आनंद त्रिवेदी ने, माना बहुत वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं अभी क्षण भी कहां बीते, अभी अभी आए थे, अभी बैठे ही हो, अभी ज्यादा देर नहीं हुई। और तुम विचारोगे तो ऐसा ही पाओगे, अगर ज्यादा देर हो गई तो उठने का वक्त करीब आ गया। जब ज्यादा देर होने लगी तो आदमी उठने की तैयारी करने लगता है। तुम और भी बैठे रहना चाहते हो, तुम रुके ही रहना चाहते हो। जब तक उठने की आकांक्षा खड़ी ना हो जाए, जब तक यहां से दूर जाने की आकांक्षा ना हो जाए, तब तक कहां देर हुई। अभी तुम उबे नहीं, बुद्धि जल्दी उब जाती, बुद्धि बड़ी छिछली है, उसमें कोई गहराई नहीं, शोरगुल बहुत है जैसा उथली नदियों में होता है। हृदय कभी उबता नहीं, बड़ा गहरा है, पता भी नहीं चलता कि बह रहा है कि नहीं बह रहा है। धार बड़ी धीमी सरकती। पूछा है मैंने समय समय पर आपसे कई भिन्न भिन्न वक्तव्य, परस्पर विरोधी वक्तव्य सुने, लेकिन उनके संबंध में कभी कोई प्रश्न मेरे मन में नहीं उठा। शुभ है, सौभाग्यशाली हो, बड़ा मंगल सूचक है। ऐसा ही होना चाहिए, नहीं होता सभी को, दुर्भाग्य। जिसको होता है आनंदित हो। इसका अर्थ हुआ कि एक बड़ी गहरी उपलब्धि तुम्हें हो रही, जो वक्तव्यों से नहीं डिगाई जा सकती। मैं क्या कहता हूं इसकी तुम्हें अब चिंता नहीं है। तुम्हारे सामने मैं क्या हूं यह प्रकट होने लगा। मैं कौन किन शब्दों का उपयोग करता हूं बहुत फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे शब्दों में झांक के मेरे सुनने को देखने लगे। मैं परमात्मा के संबंध में कुछ कहूं परमात्मा के खिलाफ कहूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों के पार मुझे खड़ा हुआ अनुभव कर लेते हो। तुम मेरे गीत की धुन को पहचानने लगे। मैं किस भाषा में गाता हूं कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम्हें भाषा समझ में आती है नहीं आती कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम मेरे गीत की धुन से राजी होने लगे। तुम्हारी लयबद्धता बंधने लगी। न फलसफी न मुल्ला से गरज है मुझको यह दिल की मौत वो अंदेशा और नजर का फसाद। पंडित है मौलवी है दार्शनिक है विचारक है उससे क्या लेना देना क्योंकि यहां तो मरने की कला सिखाई जा रही और वो तो सिर्फ दृष्टि मत विचार का उपद्रव है। पंडित तो केवल शब्दों का जाल है। न फलसफी न मुल्ला से गरज है मुझको यह दिल की मौत। धर्म तो दिल की मौत है। यहां तो मिटना है वो अंदेशा और नजर का फसाद और वहां तो केवल दृष्टिकोण नजरिए के झगड़े। यहां तुम्हें कोई झगड़ा थोड़ी सिखा रहा हूं। यहां तो झगड़ने वाले को कैसे विसर्जित कर दो यही सिखा रहा हूं। यहां झगड़ा करने वाला कैसे विसर्जित हो जाए अहंकार कैसे डूब जाए बस उतनी ही बात है। और इसलिए तो सब चिकित्साओं की बात करता हूं जिससे हो जाए चलेगा। चिकित्सा से मेरा मोह नहीं है इसे तुम समझ लो। तुम्हारी बीमारी मिटनी चाहिए। ऐसे लोग हैं जिनको बीमारी मिटाने की उतनी चिंता नहीं चिकित्सा से मोह है। मेरे एक मित्र हैं वो होम्योपैथ होम्योपैथी के दीवाने एलोपैथी के दुश्मन। उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि इस घर में बीमार होना मुश्किल है क्योंकि बीमार हुए कि होम्योपैथी कोई ठीक होता नहीं दिखाई पड़ता मगर इनकी जिद है और एलोपैथी डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते। तो अपने पति से यह कहना भी संभव नहीं कि सिर में दर्द है या बुखार है। यह भी चोरी छिपे छिपाना पड़ता है नहीं तो होम्योपैथी शुरू। मरीज से मतलब नहीं है सिद्धांत कुछ है जो नेचुरोपैथी के दीवाने उन्हें कोई फिक्र नहीं। मेरे एक रिश्तेदार उनकी पत्नी मर गई नेचुरोपैथी में पूरे समय में मौजूद था जब ये घटना घटी। उनको कई बार समझाया कि तुम इस पत्नी को मारे डाल रहे हो उपवास वो कमजोर बीमार उसको वो उपवास करवा रहे हैं। सो मैंने कहा उपवास कभी ठीक भी हो सकता है लेकिन इसकी हालत खराब है। पर वो बोले कि हालत इसीलिए खराब है कि शरीर में विषाक्त द्रव्य हो गए टॉक्सिक उनको निकालना पड़ेगा उपवास से ही निकल सकते हैं। और एलोपैथी की दवा तो मैं दूंगा नहीं क्योंकि उसमें तो और जहर है। सिद्धांत मजबूत पत्नी सूखती गई। इधर मैं उनसे कहता भी कि पत्नी सूखती जा रही है हालत उसकी खराब होती जा रही है पर वो कहते कि जरा देखो तो उसके चेहरे पे कैसी कांति वो पीली पड़ रही वो उसको कांति कहते। ऐसा ही तो साधु सन्यासियों के पास लोग जुड़े रहते उनका चेहरा पीला पड़ता जाता है और भक्त कहते हैं कैसा स्वर्ण जैसा तपश्चर्या प्रकट हो रही। दूसरा देखेगा तो उनको बीमार पाएगा इलाज की जरूरत है। भक्त देखता तो वो कहता कैसा शुद्ध कुंदन जैसा चेहरा निकला आ रहा है, स्वर्ण प्रकट हो रहा है। नजरों में सिद्धांत छाए हो तो पीतल सोना मालूम होता है। मैंने उनसे कहा ये पत्नी मर जाएगी, न केवल उसका शरीर कमजोर हुआ, उसकी नींद भी खो गई, क्योंकि भोजन की थोड़ी मात्रा नींद के लिए जरूरी है। जब शरीर में कुछ पचाने को ना हो तो शरीर को सोने की जरूरत नहीं रह जाती। जब नींद खो गई, मैंने उनसे कहा इसकी नींद खो गई, वो कहने लगे कि ये तो हो जाता है जब आदमी शांत हो जाता है, तो ऐसा तो गीता में ही कहा है कृष्ण ने, या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयम। ये पत्नी संयम को उपलब्ध हो रही है। उनको समझाना मुश्किल था, फिर पत्नी पागल भी हुई, मगर वो अपनी बकवास जारी रखे। पत्नी मर भी गई, लेकिन सवाल सिद्धांत का था। ध्यान रखना, ऐसा ही धर्मों के जगत में चलता है। तुम्हें इसकी फिक्र नहीं है कि परमात्मा मिले या ना। अगर तुम मुसलमान हो तो कुरान के आश्रय ही मिलना चाहिए, कुरान ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर तुम हिंदू हो तो गीता के सहारे ही मिलना चाहिए, गीता ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर परमात्मा तुमसे कहता हो कि आज मैं कुरान के द्वारा मिलने को तैयार हूं, तो तुम कहोगे हम मिलने को तैयार नहीं, हम तो गीता के सहारे ही आएंगे। कहते हैं तुलसीदास कृष्ण के मंदिर में गए वृंदावन, तो उन्होंने कहा कि झुकूंगा नहीं, जब तक धनुष्वाण हाथ ना लोगे। कृष्ण की मूर्ति थी बांसुरी लिए, अब तुलसीदास झुक सकते कहीं कृष्ण की मूर्ति के सामने बांसुरी लिए? वो तो धनुर्धारी राम के भक्त है। जब तक धनुष्वाण हाथ ना लोगे झुकूंगा नहीं, ये बात कैसी हुई? परमात्मा से कोई प्रयोजन नहीं है, तुम परमात्मा को भी अपने अनुशासन में रखना चाहते हो। तुम्हारे ढंग से आए तो झुकोगे, इसका अर्थ हुआ तुम अपने ढंग के लिए झुकोगे, परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं। तुम परमात्मा से कवायद करवाने को उत्सुक हो। ये कैसा अहंकार? नहीं, बुद्धि विवादी है, झगड़ेल है। यहां मैं सभी रास्तों की बातें कर रहा हूं, क्योंकि मैं कहता हूं चलो गीता से न मिले छोड़ो, भी गीता से क्या लेना देना है। आम खाने से मतलब, गुठलियां गिनने से क्या प्रयोजन? गीता से नहीं मिले जाने दो, धम्मपद सही, चलो धम्मपद से खोज ले। अगर होम्योपैथी काम ना आई तो एलोपैथी सही, एलोपैथी काम ना आई तो नेचुरोपैथी सही। पैथी से बंधने की जरूरत क्या है? जो पैथी से बंध गया वो तो रोगी से भी महारोगी है। एक तो बीमारी पकड़े और अब चिकित्सा ने भी पकड़ा। सभी रास्तों से लोग पहुंचे। मैं तुमसे सभी रास्तों की चर्चा कर रहा हूं इसलिए नहीं कि तुम सभी रास्तों पर चलो, मैं कहता हूं जब तुम्हें जो रास्ता जम जाए तुम उस पर चल पड़ना। जिनके लिए तब तक न जमा होगा उनके लिए मैं आगे बोलता चला जाऊंगा। इसलिए तुम्हें मेरे वक्तव्यों में विरोध दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मैं इतने विरोधी लोगों पर बोल रहा हूं, उनकी अभिव्यक्तियां इतनी भिन्न हैं। कहां बुद्ध, कहां क्राइस्ट, कहां कृष्ण, कहां महावीर, कहां पतंजलि, कहां तिलोपा, कहां शिव का विज्ञान भैरव, कहां लाओसु का ताओ ते किंग। इतने भिन्न लोग हैं, इतनी भिन्न सदियां, इतनी भिन्न अभिव्यक्तियां, लेकिन मेरी सारी चेष्टा तुम्हें बताने की यह है कि सबके भीतर एक की तरफ ही इशारे हैं, अंगुलियां अलग अलग, चांद एक है। तो जब मैं लाओसु की उंगली पकड़ के उठाऊंगा चांद की तरफ, तो स्वभावतः वो उंगली वैसी ही नहीं होगी जैसी बुद्ध की उंगली होगी, हो ही नहीं सकती। बुद्ध की उंगली बुद्ध की उंगली है, लाओसु की उंगली लाओसु की उंगली है। तुम अगर गौर से मुझे देखते रहे तो तुम धीरे धीरे पाओगे कि उंगलियों का प्रयोजन ही नहीं है। उंगलियां किस तरफ उठाई जा रही हैं, चांद की तरफ, उस तरफ देखो, उंगलियों को भूलो। अगर तुमने चांद देखा तो मेरे वक्तव्यों में तुम्हें एक धारा बहती हुई प्रवाहित मालूम होगी। अगर उंगलियां देखी तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, तो मेरे वक्तव्य तुम्हें अलग अलग मालूम होंगे। चांद को देखना हो तो तुम्हें मुझे बड़ी प्रेम की नजर से देखना होगा। विवाद की नजर लेके तुम आए तो शब्द दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि विवाद शब्द को भी पकड़ ले तो बहुत, शब्द भी छूट जाता है। विवादी का मन इतना आतुर होता है विवाद के लिए कि वो शब्दों को भी नहीं पकड़ पाता है। उनको पकड़ लेता है जिनको विवाद के काम ला सकता है, उनको छोड़ देता है जो उसके काम के नहीं। जिनसे विवाद खड़ा हो सकता है उनको पकड़ लेता है, जिनसे खड़ा नहीं हो सकता उनको भूल ही जाता है। लेकिन अगर तुमने प्रेम से मुझे सुना, जो कि जीवन को देखने का अलग ही अनूठा ही ढंग है, अगर तुमने प्रेम से मुझे सुना तो तुम मेरे सारे विरोधों में एक ही संगीत को प्रवाहित होते हुए देखोगे। नदियां चाहे पूरब की तरफ जा रही हों, चाहे पश्चिम की तरफ, सब सागर की तरफ जा रही हों। कुछ नजर आता नहीं उसके तस्वर के सिवा, हसरते दीदार ने आंखों को अंधा कर दिया। प्रेम के लिए जो आंख है, बुद्धि के लिए वही अंधापन मालूम होता है। इसलिए बुद्धिमान सदा प्रेम को अंधा कहते रहे। तुम प्रेमी से पूछो, प्रेमी बुद्धिमानों को अंधा मानता है, क्योंकि प्रेमी कुछ ऐसा देख लेता है जो बुद्धि देख ही नहीं पाती। कल एक युवा सन्यासी ने मुझसे पूछा कि जब से ध्यान कर रहा हूं तब से कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ती हैं, अनुभव आती हैं, कि मुझे डर लगता है कि कहीं मैंने कल्पना तो नहीं कर ली। फूल ज्यादा रंगीन दिखाई पड़ते हैं, कहीं मैं कल्पना तो नहीं कर रहा हूं। वृक्ष ज्यादा हरे मालूम पड़ते हैं, ताजे और नहाए मालूम पड़ते हैं, कहीं मैं कल्पना तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वृक्ष तो ये वही है, न इन्होंने कोई स्नान किया है न कोई ताजगी आ गई। उस युवक की चिंता स्वाभाविक है, भीतर मन साफ हो रहा है तो बाहर भी चीजें साफ होने लगी। मैंने कहा घबराना मत, अगर डर गए और ऐसा सोच लिया और मान ली बुद्धि की बात की ये तो कल्पना का जाल है, तुमने सपने देखने शुरू कर दिए, तो जो द्वार खुलता था, जो पर्दा हटता था, रुक जाएगा। ये तो बुद्धि ने सदा ही कहा है। एक कवि को फूल में उतना दिखाई पड़ता है जितना किसी को दिखाई नहीं पड़ता। एक छोटे बच्चे को सागर के तट पर कंकड़ पत्थर में, सीपी शंख में इतना दिखाई पड़ता है जितना किसी को दिखाई नहीं पड़ता। कंकड़ पत्थर भर लेता है खीसे में, जो भी रंगीन मिला। माँ बाप कहे चले जाते हैं कि फेंको, बोझ हुआ जा रहा है, ये घर ले जाके क्या करोगे। बच्चा छोड़ता भी है तो भी आंख में आंसू आ जाते। ये जो बड़े बूढ़े हैं, इनको अगर हीरे जवाहरात होते तो ये भी भर लेते। अभी इनको ये पता ही नहीं रहा, ये भूल ही गए भाषा, कि इस बच्चे को अभी कंकड़ पत्थरों में भी हीरे दिखाई पड़ते हैं। अभी हर रंगीन पत्थर कोहिनूर है, अभी इसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी, अभी साफ है। अभी इसे सीपी शंख में खजाने दिखाई पड़ते हैं। अभी इसकी बुद्धि मंद नहीं हुई, अभी प्रतिभा ताजी ताजी है, अभी अभी परमात्मा के घर से आया है, अभी नजर साफ है, अभी धूल नहीं जमी, अभी अनुभव का कचरा इकट्ठा नहीं हुआ। लेकिन जल्दी ही बड़े बूढ़े इसे समझा देंगे कि कंकड़ पत्थर हैं, छोड़ो, और दूसरे कंकड़ पत्थरों की दौड़ पर लगा देंगे जिनमें उनको मूल्य दिखाई पड़ता है। जब तुम फिर से प्रेम में पड़ते हो तो फिर तुम्हें बच्चे की आंख मिलती, जब तुम प्रेम में पड़ते हो तो तुम्हें कवि की आंख उपलब्ध होती, तुम्हें रहस्यवादी संत की आंख उपलब्ध होती। तो अगर तुम मेरे प्रेम में हो तो ही मेरे पास भी हो, ध्यान रखना। अन्यथा पास आके भी कोई पास आ पाता है। शारीरिक निकटता किसी को पास थोड़ी लाती, एक आत्मिक निकटता। फिर तुम हजारों मील दूर भी रहो तो भी पास हो, विचार बीच में ना हो तो तुम पास हो, विचार बीच में हो तो तुम पास हो के भी दूर हो, और विचार बीच में ना हो तो प्रेम बहता है। विचार पत्थर की तरह रोके हुए है प्रेम को। जहां प्रेम बहता है वहां तुम्हें कुछ चीजें दिखाई पड़ेंगी जो प्रेम से खाली आंखों को दिखाई नहीं पड़ेंगी, और प्रेम से खाली आंखें तुम्हें अंधा कहेंगी। तुम उससे बेचैन मत होना, उनके लिए ये वक्तव्य स्वाभाविक है। बुद्धिमान तुम्हें पागल कहेंगे, सदा से उन्होंने कहा है। जब बुद्ध के पास लोग आके हजारों की संख्या में संन्यास्त होने लगे तो लोगों ने कहा पागल हो गए, इस आदमी ने लोगों को पागल किया, ये क्या है, सम्मोहित हो गए। जब महावीर के पास लोग आके संन्यास्त हुए और उन्होंने जीवन का नया ढंग लिया, नई चाल सीखी, तो लोगों ने फिर कहा कि पागल हुए। ये संसार सदा से ही, जो भीड़ का रास्ता है उससे अन्यथा जाने वालों को पागल कहता रहा है। अगर तुम में हिम्मत हो मेरे साथ चलने की तो तुम्हें यह भी हिम्मत जुटानी पड़ेगी कि लोग जब पागल कहें तो हंस लेना, और जब लोग पागल कहें तो क्रोध मत करना, स्वाभाविक है। वे तुम्हें पागल नहीं कह रहे हैं, वे ये कह रहे हैं कि अगर तुम ठीक हो तो फिर हम पागल हैं क्या। वो सिर्फ आत्मरक्षा कर रहे हैं, तुम उन पर नाराज मत होना। अगर तुम नाराज हुए तो तुम उनके विचार को मजबूत कर दोगे कि निश्चित ही तुम पागल हो गए हो। तुम नाराज मत होना, तुम हंसना, तुम उन्हें विभूचन में डाल देना, तुम मुस्कुराना, तुम कहना कि ठीक कहते हो, पागल हो गए हैं लेकिन पहले से भले हो गए हैं और पहले से ज्यादा मजे में हो गए हैं, मगर पागल हो गए हैं ये सच है। तुम्हारे पागलपन को उनके प्रति करुणा बनने देना, क्योंकि वे परेशान हैं अपने पागलपन से, वे भी चाहते हैं कि छूट निकले, कहीं कोई द्वार दरवाजा मिले, वे कारागृह में बंद हैं। अगर तुम्हें आनंदित देखा, शांत देखा, तो तुम उन्हें भी खींच लाओगे। अगर तुम क्रोधित हुए, अगर तुम अपनी आत्मरक्षा करने लगे, तुमने कहा कि मैं पागल नहीं, अगर तुम विवाद में पड़े तो तुम उनके लिए द्वार बंद कर दोगे। यही तो वे चाहते थे कि तुम विवाद में उतर आओ। तुम मुस्कुराना, तुम उन्हें आशीर्वाद दे देना, उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करना, एक फूल उनको भेंट कराना और लौट आना। तुम कोई विवाद मत करना, तो तुम उनके लिए भी रास्ता खुला रखोगे। आज नहीं कल वे भी आ सकते हैं, उनकी भी संभावना उतनी ही महान है जितनी तुम्हारी। समय समय पर आपसे कई भिन्न भिन्न वक्तव्य, परस्पर विरोधी वक्तव्य सुने, लेकिन उनके संबंध में कहीं कोई प्रश्न मेरे मन में नहीं उठा, और उनके बावजूद आप मेरी दृष्टि में, हृदय में सदा सर्वदा एक और अखंड बने रहे। उन विरोधी वक्तव्यों के बावजूद अगर तुम्हारे हृदय में बना रहा तो ही बने रहने में कुछ सार है। अगर मैं तुम्हें तर्कयुक्त लगूं, तुम्हारे बंधे बंधाए तर्क की सीमा में बंधा हुआ लगूं, फिर तुम मुझसे राजी हो जाओ तो वो दोस्ती कुछ बहुत गहरी नहीं, वो केवल विचार का नाता है। वो नाता कभी भी टूट सकता है, मेरे विचार बदल जाएं या तुम्हारे बदल जाएं, वो टूट जाएगा। और विचार तो रोज बदलते रहते हैं, विचार का कोई भरोसा, विचार पे भरोसा तो ऐसे है जैसे कुछ न किसी ने सागर की लहरों पर भवन बनाने की आकांक्षा की। विचार तो बड़े चंचल है। मन तो मौसम सा चंचल है, सबका होकर भी न किसी का, अभी सुबह का, अभी शाम का, अभी रुदन का, अभी हंसी का, मन तो मौसम सा चंचल है। मन के सहारे अगर तुम मेरे साथ रहे तो ज्यादा देर चलना ना होगा, ये दोस्ती थोड़ी देर की रहेगी, रास्ते पर दो राहगीर मिल गए, फिर मेरा रास्ता अलग हो गया, फिर तुम्हारा रास्ता अलग हो गया, मिले थोड़ी दूर को साथ चल लिए, फिर बिछुड़ गए। प्रेम ऐसी कुछ बुनियाद है कि शाश्वत हो सकता है, मृत्यु भी उसे मिटाती नहीं, जीवन तो उसे डगमगा ही नहीं सकता, मौत भी उसे नहीं डगमगा पाती। बुद्ध की मृत्यु करीब आई, उन्होंने घोषणा कर दी कि आज वे विदा हो जाएंगे शरीर से। आनंद बहुत रोने चीखने लगा, लेकिन वो चकित हुआ कि बुद्ध का एक जो दूसरा शिष्य सुभूति एक वृक्ष के नीचे शांत बैठा है। आनंद उससे कहा, तुम्हें खबर नहीं मिली, किसी ने बताया नहीं, भगवान आज देह छोड़ देंगे। तुम रो नहीं रहे, तुम होश में हो, तुम्हारी आंखें गीली नहीं, फिर कभी मिलन ना होगा, फिर कभी उनके ये सद्वचन सुनने को ना मिलेंगे, फिर कौन सिखाएगा ये सद्धर्म, सांस तक खोया जाता है। सुभूति ने कहा, जिस शास्ता से मेरा संबंध है उसके खोने का कोई उपाय नहीं, जिससे मेरा संबंध है उसकी मौत नहीं हो सकती, वो फिक्र मैंने पहले ही कर ली है। आनंद, तूने कुछ गलत से संबंध बना लिया, विचार से मेरा कुछ लेना देना नहीं, मेरा संबंध गहरा है विचार से, हम साथ ही हैं, अब हम अलग नहीं हो सकते, अलग होने का कोई उपाय नहीं। आनंद ने बुद्ध को आके कहा, बुद्ध ने कहा, सुभूति ठीक कहता है आनंद। आनंद ने कहा, मैं 40 वर्ष आपके पास रहा और मैं आपके पास ना हो पाया, क्या बाधा है? बुद्ध ने कहा, तू ज्यादा सोच विचार करता है, तेरा मुझसे संबंध विचार का है, तू अभी भी ध्यान में मुझसे न जुड़ा। ये ध्यान बुद्ध का शब्द है प्रेम के लिए, कहो ध्यान कहो प्रेम।
1: अभी आप सुन रहे थे ओशो की विचार, विषय था व्हाई डू कॉम्प्लिकेशंस अराइज इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में उलझने क्यों आती हैं। आशा करता हूँ इन विचारों को बहुत ही ध्यान से आपने सुना होगा। ओशो कहते हैं अतीत से मुक्ति, अर्थात हर कोई अपने भीतर किसी दर्द, स्मृति या अपेक्षा को पकड़े बैठा है। जब अतीत का बोझ गिरता है तभी वर्तमान हल्का हो जाता है। जीवित बुद्ध, अर्थात जीवित बुद्ध हमारे बस में नहीं होते, उनके साथ तो अगर मैत्री बनानी हो तो तुम्हें उनके बस में होना पड़ता है। स्वतंत्रता, अर्थात फ्रीडम, तुम जो भी अर्थ निकालना चाहो निकाल सकते हो, अर्थ तुम्हारे होंगे। ओशो के विचारों को आज भी ध्यान, आत्मविकास और जीवन के रहस्यों को समझने के लिए प्रासंगिक माना जाता है। ऐसे विचारों को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
2: शारदा। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। ये हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।
2: मानो तो सब कुछ, न मानो तो कुछ भी नहीं।

8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसीलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं अच्छी अच्छी बातें आपके साथ साझा करने के लिए। सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते यहां से ज्ञान विज्ञान की बातें होती हैं, पढ़ने पढ़ाने की बातें होती हैं, जिंदगी को जीने की बातें होती हैं। जब पढ़ने पढ़ाने की बात मैंने यहां जिक्र कर दी है तो आज कुछ ऐसी ही बातें होंगी कि अगर आप अपने आप को लेकर आगे जाना चाहते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की बात हो, विदेश की बात हो, तो किस किस दुश्वारियों का आपको सामना करना पड़ता है, इन दुश्वारियों से या यूं कहें कि इन चैलेंजेस से कैसे हम अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। जाहिर सी बात है, इन सारी बातों को जानने के लिए, समझने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, एक काउंसलर की जरूरत होती है। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में है जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हर एक सवाल का जवाब आपको बखूबी मिलेगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीजा इन्फो के आप संस्थापक हैं, सीईओ हैं, मिस्टर अमित बैजल जी, जो कि 2007 में इन्होंने इसकी स्थापना की और ये एक बुटीक माइग्रेशन लॉ एंड हायर एजुकेशन कंसल्टेंसी है और जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस है, साथ ही साथ भारतीय उपमहाद्वीप, केन्या में, और मतलब इस तरीके से धीरे धीरे आप पैर पसार रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। एजुकेशन के बारे में सर की अगर बात मैं आपके सामने रखूं तो सर ने जो एजुकेशन रही है वो डीपीएस आर के पुरम नई दिल्ली से रही है और आप आईएचएम में ग्रेजुएट है, यानी कि पूसा इंस्टीट्यूट जिसका नाम आता है, और आईएचएम का जब जिक्र आता है तो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई का जिक्र आता है। साथ ही साथ आपने सर्टिफिकेट प्रोग्राम माइग्रेशन लॉ एंड प्रैक्टिस फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से, कैनबरा एंड एन एमबीए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी से आपने वहां से पढ़ाई की है, तो बहुत सारा अनुभव है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सर से ही खुद इसके बारे में जानना चाहूंगा। तो सर बहुत बहुत आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: मैं तो थक जाऊंगा सर, बहुत अच्छा आपका अच्छा एक्सपीरियंस है और अच्छी बातें आपके बारे में पढ़ रहा था, तो बस मैं तो यही कहूंगा कि मुझे खुशी हो रही है आपसे बात करके और बहुत सारी बातें हम जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। जहन में पहले सवाल ये आता है कि आप कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया, दिल्ली इज वेरी नाइस, ये हमारी होम सिटी है। 25 साल हुए दिल्ली छोड़े हुए लेकिन अभी भी घर ही लगता है।
0: बहुत सही कहा आपने, घर ही लगता है। रियली नाइस। सबसे पहले जहन में सवाल ये भी आता है कि ये जो कंपनी है आपकी जिसके आप संस्थापक हैं, वीजा इन्फो
1: जी,
0: मैं जानना चाहता हूँ, मेरे लिसनर्स जानना चाहते हैं कि वीजा इन्फो है क्या।
1: देखिए, जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया था तो मैं भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह गया था। मैं 1999 की बात बता रहा हूँ आपको। तो जब मैं वहाँ पहली बार गया तो मुझे ये एहसास हुआ कि एक तो मुझे आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था ऑस्ट्रेलिया है क्या। इनफैक्ट मुझे ये नहीं पता था कि एजुकेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है, हर कंट्री में अलग अलग तरीके से पढ़ाई जाती है, अलग अलग तरीके से पढ़ी जाती है। तो क्योंकि मेरे पास सिर्फ हिंदुस्तान का अनुभव था तो मेरे लिए काफी दिक्कत आई मुझे ये समझने में कि ऑस्ट्रेलिया में टोटली सिस्टम जो है जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो ना तो हमें, जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, हमें किसी ने गाइड किया था कि वहां जाके क्या होगा, ना जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सब्सटैंशियल या फैक्ट बेस्ड थी। सबने अपनी अपनी ओपिनियंस जरूर साझा किए थे, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो तो उन्होंने अपने तजुर्बे से हमें बताया था, हमारे दोस्तों ने अपना तजुर्बा शेयर किया था, लेकिन एक साइंटिफिक वे, एक सही समझदार तरीका, जो जैसे अब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं आप पढ़ने के लिए, स्कूल जाते हैं आप अपनी जिंदगी में आगे पढ़ने के लिए, तो स्कूल में आपकी 12 साल आप लगाते हैं, लेकिन जब हम बाहर गए अपनी पूरी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तो हमारे को किसी ने 6 महीने की भी ट्रेनिंग नहीं दी थी कि बाहर जाके करना क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज और रिसर्च की बहुत बड़ी कमी है स्टूडेंट्स के अंदर। जब वो बाहर जाते हैं तो वो यूजुअली लोगों से ओपिनियन लेते हैं, एजेंट्स के पास जाते हैं, एजुकेशन एजेंट्स के पास पहुंच जाते हैं और अपना पूरा फ्यूचर का करियर उनके हाथ में रख के बोलते हैं आपको जो करना है कीजिए।
0: जी,
1: तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसको क्योंकि जब आप सोचते हैं कि हमें बाहर जाना है तो आपको एक डिफरेंट तरीके से एक डिफरेंट अप्रोच लेनी चाहिए बाहर के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, और वो बहुत जरूरी है
0: जी। मैं समझता हूँ कि सर उसके बाद आपका रोल शुरू होता है, आपकी भूमिका शुरू होती है, जब आपने कहा कि एक स्टूडेंट्स को कुछ भी ज्ञान नहीं होता, वो अनभिज्ञ होता है, तो जो आपकी भूमिका है, क्योंकि आप एक यूं कहें कि सर्टिफाइड एजेंट हैं, अच्छे काउंसलर हैं, और जब आप लोगों से मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, स्टूडेंट्स के बीच में आप जाते हैं, तो वो क्या चैलेंजेस होते हैं, वो क्या आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपसे समझना चाहते हैं, और उस वक्त आप उनको किस तरीके से गाइड करते हैं? या यूं कहें कि इसके साथ साथ सवाल मेरा ये भी जुड़ा हुआ है कि ये जो जर्नी शुरू होती है आफ्टर ट्वेल्थ के बाद शुरू होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाना चाहता है, स्टूडेंट्स को जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं, तो वो आपका जो भूमिका है, जो रोल है, वो क्या रहता है?
1: देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जर्नी ट्वेल्थ के बाद शुरू होती है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आज अगर आप अपने बच्चे को IIT में एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो यूजुअली आप उसकी तैयारी 6ठी 7वीं से शुरू कर देते हैं
0: जी।
1: आप 12वीं की वेट नहीं करते हैं कि 12वीं खत्म होगी उसके बाद हमारा बेटा IIT की इंजीनियरिंग की परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए शुरुआत करेगा। तो आपके लिए जो जो चीज जरूरी है जिंदगी में, आप उसकी तैयारी बहुत अरसे पहले से शुरू कर देते हैं, चाहे वो IIT हो, चाहे वो MBBS हो, चाहे वो IIM में एडमिशन हो, चाहे कोई भी किस्म का एंट्रेंस टेस्ट हो। लेकिन जब बाहर जाने की बात आती है तो यूजली देखा यह जाता है कि माँ बाप अपने बच्चों को ये कहते हैं कि पहले आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, 12वीं खत्म कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस या वहां जाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी दिक्कत तो यहीं पर आती है, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलता रिसर्च करने का, समझने का, सोचने का, और आपको डिसीजन लेना होता है इंस्टेंटली। तो उसमें फिर वो अरेंज मैरिज वाला सीन हो जाता है कि आपको लड़की दिखाई गई है, आपको 15 सेकंड में हाँ या ना बोलना है, और उसके बाद उसके साथ पूरी जिंदगी निभाना है।
0: ऐसा तो अक्सर होता भी है कि मतलब कभी कभी फैसले गलत भी हो जाते हैं, आपकी बात को मैं समझ पा रहा हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो फैसले हमारे बड़े बुजुर्ग ले लिया करते थे, तो जिंदगी भर जब एक दूसरे के साथ रहते हैं हस्बैंड वाइफ, वो फैसले सही भी होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो खैर, आपकी बात का भावार्थ मैं समझ पा रहा हूँ, हमारे लिसनर्स भी इस बात को समझ पा रहे हैं कि सर ने वाकई बहुत अच्छी बात कही है कि ऐसा अक्सर हिंदुस्तान में भी होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है, कहीं कहीं नहीं होता। दोनों बात सर ने यहाँ रखी है कि अगर आप वो एक प्लेटफॉर्म, अगर वो आप एक बेस बना के शुरू से ही चलेंगे तो 12th के बाद आपको दिक्कत परेशानी ज्यादा सामने नहीं आएगी। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए, और जो अमित सर आपसे अपनी एक जर्नी शेयर कर रहे हैं, इस बात को निश्चित तौर पर जब आप ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते और हमारे जो गेस्ट हैं हम उनसे ही जानना चाहेंगे। म्यूजिक से आपका वास्ता तो रहता ही होगा सर, कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जो आप सुनना चाहते हो, हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहते हो?
1: मुझे मोहम्मद रफी के सारे गीत बड़े अच्छे लगते हैं, तो मोहम्मद रफी का कोई भी गाना बहुत ही अच्छा होता है, और सुबह का टाइम है।
0: ये ब्यूटीफुल ट्रैक आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ अमित सर के लिए। तो ये गाना आपके लिए भी है लिसनर्स, इस गाने को आप जरूर सुनिए, कहीं जाएगा मत। स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन, और आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है अमित बैजल साहब, जो कि वीजा इन्फो के संस्थापक हैं, और बहुत सारी बातें हो रही हैं वीजा इन्फो के बारे में, करियर के बारे में। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, आप हैं अमित बैजल जी, जो कि वीजा इन्फो के आप संस्थापक हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: ब्रेक पर जाने से पहले आपने सर बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, जो मुझे भी समझ में आई कि 12th के बाद हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये प्लानिंग अगर पहले से होगी तो निश्चित तौर पर ज्यादा दिक्कत परेशानी लोगों के सामने नहीं आएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि लोग आपकी जो ड्यूटी शुरू होती है, आपसे जब मिलते हैं, विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा एजेंट, अच्छा काउंसलर अगर मिल जाए तो उनकी मेहनत वसूल हो जाती है, अदरवाइज इस पेशे से भी विश्वास उठ जाता है। अक्सर हमने देखा है कि कबूतरबाजी, जिसे एक आम भाषा में कहा जाता है कि लोग पैसे ऐंठ लेते हैं, वहां हम आपको भेजेंगे, वहां धरातल पर चीजें अलग कुछ होती हैं, तो ये प्रोसेस मैं समझना चाहता हूँ।
1: देखिए, सबसे पहले आपको इसकी तैयारी तरीके से करनी पड़ेगी, और सबसे पहला सवाल आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए, आपका गोल क्या है। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका उद्देश्य क्या है, क्योंकि उद्देश्य और डिजायर कि मुझे क्या ख्वाहिशें हैं, वो दो अलग अलग चीजें होती हैं। आपकी ख्वाहिश हो सकती है बहुत आपके पास पैसा हो, ये एक ख्वाहिश है, ये गोल नहीं है। गोल आपका होना चाहिए बड़ा क्लियर, संक्षिप्त, कि आप करना क्या चाहते हैं आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद
0: जी।
1: अब लोग कहते हैं कि हम कैसे बताएं कि आज 5 साल के बाद क्या होगा या क्या करना चाहते हैं। भले ही लोगों को ये ना पता हो कि हमें 5 साल के बाद क्या करना है, लेकिन उनको एक चीज हमेशा हर एक आदमी को पता होती है कि हमारे को 4 से 5 साल के बाद जिंदगी जीने के लिए जो लाइफस्टाइल हम चाहते हैं उसके लिए हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये सवाल किसी से पूछे, भले ही वो इससे नजर चुराए, आंसर ना करना चाहे, लेकिन एक ना एक दिन जिंदगी में सबको आंसर करना पड़ता है।

0: कि उनको एक्चुअली में जिंदगी जीने के लिए जैसा वो लाइफस्टाइल चाहते हैं उसके लिए कितनी आमदनी की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज तो मैं अपने श्रोताओं से ये कहूंगा कि सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको अपनी जिंदगी जैसा आप जीना चाहते हैं उस जिंदगी जीने के लिए अगर आपकी ख्वाहिश और रिक्वायरमेंट 2 लाख रुपए महीने की सैलरी की है तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि मेरी 2 लाख रुपए सैलरी का मेरा उद्देश्य है आज से 3 या 4 साल बाद। और आपको ये समझना जरूरी है कि आप उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या करना चाहते हैं
1: और
0: जो कर रहे हैं क्या वो आपको उस उद्देश्य के पास लेके जा रहा है या उससे दूर लेके जा रहा है। तो ये अगर इस तरीके से आदमी सोचना शुरू करे तो उसको आउटकम्स बहुत अच्छे मिलेंगे, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मिलेंगे। लोग अक्सर ये वाली बात करते हैं कि हमने ऐसा सोचा था बट ऐसा हुआ नहीं,
1: नहीं हुआ।
0: ये 99% लोग अपनी जब नाकामी होती है तो
1: छुपाने की कोशिश करते हैं,
0: छुपाने की भी कोशिश नहीं करते। मैं ये नहीं कहूंगा कि छुपाने की कोशिश करते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनको प्रिपेयर नहीं थे। अब प्रिपेयर नहीं थे तो अब नाकामी का कोई कारण तो होता है
1: जी, जी।
0: तो हर आदमी हर इंसान एक कारण ढूंढता है। तो अगर तो आपने ये देख लिया कि आपको कितनी आमदनी चाहिए तो उसके बाद आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप उस आमदनी को हासिल करने के लिए क्या एजुकेशन का सहारा ले रहे हैं? अगर एजुकेशन का सहारा ले रहे हैं तो एजुकेशन को एक्सपेंस मत समझिए। एजुकेशन इज नॉट एन एक्सपेंस, एजुकेशन इन्वेस्टमेंट है। जब आप अपना घर खरीदते हैं, आपके माँ बाप ने घर खरीदा होगा तो उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, कितनी लोगों से बात करी होगी ये देखने के लिए कि उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, क्या दाम बढ़ेंगे आगे जाके। तो जो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो घर खरीदने की हो, चाहे वो सोने जवाहरात की हो, हर इन्वेस्टमेंट पे इंसान रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखता है। तो एजुकेशन भी एक इन्वेस्टमेंट है
1: जी।
0: और एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगी वो आपकी लाइफस्टाइल को फंड कर सकती है या नहीं, इसका जवाब आपको देना है सबसे पहले। और उसके हिसाब से आपको अपना गोल सेट करना है। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि आपने गोल सेट कर लिया कि हमारे को ये आमदनी चाहिए। अब क्या ये पॉसिबल है कि आपके गोल के मुताबिक ये आमदनी आपको हिंदुस्तान में हासिल हो सकती है? हो सकता है आपको ये आमदनी हिंदुस्तान में नहीं बाहर हासिल हो सकती है। तो फिर आपको ये भी देखना है कि बाहर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कितने सालों के लिए जाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है आप बाहर जाएं तो हमेशा के लिए चले जाएं। बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप 2 साल के लिए, 4 साल के लिए या परमानेंटली भी बाहर जाके सेटल हो सकते हैं। तो अब आपको ये जवाब देना है कि आपका गोल क्या है। आपने बाहर थोड़े टाइम के लिए जाना है या परमानेंटली जाना
1: बस
0: है?
1: नहीं जाना है।
0: बसने जाना है
1: जी।
0: तो अगर तो आपने बसने जाना है तो फिर हम उस तरीके से आपके सवालों के जवाब और आपको आपसे ही हम बात करके आपसे समझेंगे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। जब हमारे को गोल और उद्देश्य क्लियर है उसके बाद हमारे को किसी चीज की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमारे को हर चीज का नापतोल करने का एक चीज मिल जाती है कि अगर ये चीज आपको डिसीजन उद्देश्य के पास लेके जा रहा है तो ठीक है, दूर लेके जा रहा है तो उसके बारे में सोचो नहीं
1: जी जी।
0: तो सब कुछ आसान हो जाता है उद्देश्य साफ हो तो।
1: क्या बात है, बहुत खूब। इस बात का मर्म यही है कि उद्देश्य साफ होना बहुत जरूरी है, पिक्चर क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो प्लानिंग आप करते हैं तो निश्चित तौर पर वो प्लानिंग एक इंसान को आगे लेकर जरूर जाएगी। यहाँ पर चैलेंजेस की हम बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। सो लिसनर्स, वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, ये तो रही बात एक नॉलेज की, जानकारी की, कि ये जानकारी अगर आपको है, आपका जो एक उद्देश्य है वो सब कुछ अगर क्लियर है तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद मैं आपको मिलूंगा यहीं, कहीं आप जाएगा मत। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान, खास शख्सियत है अमित बैजल जी, जो कि वीजा इन्फो के संस्थापक है। बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ, मेरे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पढ़ने पढ़ाने की बातें हो रही हैं, जिंदगी को जीने की बातें हो रही हैं, साथ ही साथ म्यूजिक की भी बातें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने स्टार्टिंग में रफी साहब का गाना आपके लिए प्ले किया, और अभी ऑफ एयर मेरी बात हो रही थी सर से, तो वो कह रहे थे कि लता जी मेरे दिल के आसपास रहती हैं, उनके गानों को सुनकर सुकून मिलता है। तो यानी कि इस ब्रेक पर लता जी का गाना मैं आपके लिए जरूर प्ले करूंगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वीजा इन्फो के संस्थापक अमित बैजल जी, और बहुत अच्छी जानकारियां हम आपसे साझा कर रहे हैं लिसनर्स। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: ब्रेक पर जाने से पहले हमने नॉलेज की बात की, गोल की बात की, तैयारियों की बात की। जानकारी का अभाव कम होता है जिसकी वजह से लोग राह भटक जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने हमारे सामने रखी। लेकिन अब उसके बाद जब हम एक स्टेप को आगे बढ़ रहे होते हैं, कदम आगे बढ़ा रहे होते हैं, तो ये भी सच है कि चुनौतियां फिर वहां से शुरू होती हैं। चाहे वो रुपयों की बात हो, चाहे वो ठगने वाली बात हो, चाहे वो दूसरे विदेश में रहन सहन की बात आती है, अपना सपन नहीं मिलता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2-3 पॉइंट्स मैं आपको गिना पा रहा हूं।
1: जी,
0: आपकी नजर से वो चैलेंजेस क्या हैं?
1: देखिए, आपने बड़ी सही बात कही कि गाइडेंस किस आदमी से या किस शख्सियत से ली जा रही है वो बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण है।
0: जी,
1: यहाँ पर देखा जाता है कि बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो आपको कहते हैं कि हम आपको बाहर भेजेंगे, आपको बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे या काम करने के लिए भेजेंगे, और लोग अक्सर उस झांसे में पड़ जाते हैं क्योंकि बहुत कम पैसा मांग रहे होते हैं या थोड़ा बहुत पैसा मांग रहे होते हैं, और लोग वो जाके अपना काम शुरू करा देते हैं। लेकिन वो ये तहकीकात नहीं करते कि कितने लोग कामयाबी की सीढ़ी पे वो एक्चुअली में गए हैं। एक दूसरी चीज, अगर आप किसी कंट्री में बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो कनाडा हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, ये बाहर की सारी कंट्रीज अपने जो लॉयर्स होते हैं उनको एक लाइसेंस देता है। अगर आप किसी भी लाइसेंस्ड एजेंट, नॉट लाइसेंस्ड एजेंट इन इंडिया बट लाइसेंस्ड एजेंट इन द कंट्री जहां आप जाना चाह रहे हैं, अगर आप कभी भी उन एजेंट्स के साथ काम करते हैं, तो आपको दो तरीके फायदे होते हैं।
0: एक, जैसे कि आप हैं,
1: जैसे कि हम हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस है, हम जिम्मेवार हैं। अगर आपके साथ कोई भी नाइंसाफी होती है, हमारा लाइसेंस खतरे में आता है। तो जब किसी का लाइसेंस खतरे में आता है, तो वो मेक श्योर करता है कि हमारी रोजी रोटी के ऊपर कोई आंच ना आए।
0: सही।
1: अब हिंदुस्तान में देखा अक्सर ये जाता है कि किसी को अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप क्या करेंगे, शायद मतलब दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मुझे तो ऐसा महसूस होता है, क्योंकि जो मुझे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं स्टूडेंट्स जिनके साथ ऐसा हुआ है, वो यही बताते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया, कंप्लेंट्स करी, सब कुछ किया, लेकिन ज्यादा कुछ हुआ नहीं,
0: सामने वाले को जेल नहीं हुई।
1: देखिए, जेल तो बहुत कम की बात है, एक आदमी की जिसकी करियर खत्म हो गया है, अगर किसी को जेल हो भी जाती है 2 साल की 4 साल की, उससे उस जिसका जितने लोगों का करियर तबाह हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो अपने आपकी सुरक्षा स्वयं करें।
0: क्या बात है, सही।
1: तो
0: सही,
1: आपको अगर अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है तो उसके लिए दो चीजें ध्यान रखिए। एक, सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस्ड रजिस्टर्ड एजेंट्स के थ्रू ही काम कराएं, क्योंकि उनकी जवाबदेही बनती है आपकी तरफ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कभी भी किसी की मुंह जवानी बात ना माने, जो चाहे वो हमारी कंपनी हो चाहे वो कोई भी कंपनी हो, जो भी वो आपको बोल रहे हैं, आपका हक है उनसे वो लिख के लेने का।
0: क्या?
1: तो अगर तो वो लिख के देने के लिए तैयार है, आप उनसे आगे बात कीजिए। अगर जो आदमी अपनी बात को लिख के देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उसकी बात पे जब उसको खुद को भरोसा नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं?
0: सही बात है, सही कहा आपने। सो लिसनर्स, इस बात का आशय यही निकल कर आ रहा है कि इन दो बातों को आप हमेशा ध्यान में रखें, या यूं कहें कि गांठ बांध लीजिए कि जो एजेंट हैं, जो काउंसलर हैं, क्या उनके पास वो हथियार है, यूं कहें कि जिसके बदौलत वो काम कर पा रहे हैं, लाइसेंस गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड किया हुआ है, तो निश्चित तौर पर आप उनसे मिलें, बात करें। दूसरी बात, सर ने जो बात आपको बताई कि फिर आपको दिक्कत परेशानी होगी नहीं, और निश्चित तौर पर आपको उस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। तो इन बेसिक बातों का आप हमेशा ध्यान रखें और गलत दिशा में आप ना जाएं। अदरवाइज होता क्या है कि आप अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, आप रुपयों से रुपया आपका चला गया होता है और फिर इस तरीके के जो एजेंट्स हैं उनसे भी आपका विश्वास उठता चला जाता है। अक्सर सर हमने एक वर्ड सुना है हिंदुस्तान में कबूतरबाजी, यानी कि ये चीज वही बातें हैं जो हम बात आप कर रहे हैं। लोगों से पैसा ऐंठ लिया जाता है, विदेश उनको भेजा जाएगा एजुकेशन के लिए, जो मैं बात कर रहा था कि धरातल पर कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं, भिन्न होती हैं। तो आपकी बात का एक संदेश मैं समझता हूँ कि हमारे श्रोताओं ने समझ ही लिया होगा इसका जो मर्म है। जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे एक जहन में सवाल ये आ रहा है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ने के लिए आगे जाते हैं और कुछ लोग वहीं बस भी जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, बस जाते हैं।
0: तो क्या आप फर्क महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान की जो शिक्षा पद्धति है विदेशों की जो शिक्षा पद्धति है, क्या एक अंतर आप महसूस करते हैं कि जिसकी वजह से लगता है कि, मैं समझ रहा हूँ कि आपने बताया कि मुझे 2 लाख रुपए महीना चाहिए, हिंदुस्तान में शायद उनको नहीं मिल पा रहा, यही एक वजह रहती होगी कि पैसा बाहर विदेशों में बहुत ज्यादा है। तो किस तरीके से इस बात को आप समझाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: देखिए, मैं आपको पर्सनली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बताना चाहूंगा कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो नोट किया है कि वो ये है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो बाहर मेहनत का आपको जेन्युइन फल मिलता है।
0: जी,
1: हिंदुस्तान में सभी मेहनती है और सभी मेहनत करते हैं, लेकिन एक मेहनत होती है एफिशिएंट मेहनत और एक होती है इनएफिशिएंट मेहनत। तो अब मुझे इतनी हिंदी नहीं आती कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट का आपको मतलब समझा सकूं, बट आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर तो आपकी मेहनत आप एक साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं और बाहर की कंट्री में कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलता है। वहां पर आपकी इज्जत काम की है। अगर आप कोई भी काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा, ऑस्ट्रेलिया में एक प्लम्बर एक डॉक्टर से ज्यादा कमाता है। तो अब आप सपने में भी नहीं सोच सकते ये वाली बात कि एक इंडिया में एक प्लम्बर एक सर्जन से ज्यादा कमा ले, लेकिन ये फैक्ट है। एक इलेक्ट्रिशियन की अपॉइंटमेंट बाद में मिलेगी, डॉक्टर की पहले मिलेगी। ये फैक्ट्स ऑफ लाइफ हैं बाहर के, लेकिन ये वाले फैक्ट्स ऑफ लाइफ इंडिया में अभी आपने कभी देखे ही नहीं, आपकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपको कभी दिक्कत आ सकती है।
0: चक्कर है आपकी बात
1: तो ये फैक्ट बात है। देखिए, बाहर क्या होता है कि बाहर काम की कदर है, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब। सुबह जो कूड़ा लेने के लिए आते हैं लोग, ऑस्ट्रेलिया में वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब उनकी होती है। और 4 घंटे से 5 घंटे का काम होता है,
0: जबकि हिंदुस्तान में ऐसे कर्मचारियों को हीन भावना से देखा जाता है।
1: बिल्कुल, देखिए वही मैं बात बता रहा हूँ कि एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे कल्चर में जहाँ सब सामान्य, देखिए वासुदेव कुटुम्बकम हमारे देश की एक संस्कृति है, लेकिन उसका एक्चुअली में पालन मैं बाहर जाके देखता हूँ।
0: क्या बात है, वाकई ये तो बात आप बहुत अच्छी बता रहे हैं हमें कि इस तरीके से जमीन आसमान का फर्क आप वहां महसूस करते हैं। सिर्फ यहाँ जो बातें हैं शायद वो कहने के लिए रह गई हैं। धरातल वाली बात मैं जब लेकर आता हूँ तो शायद इसलिए लेकर आता हूँ कि प्रैक्टिकली हम उन चीजों को नहीं देख पा रहे। एक बात मुझे ये भी समझ में आती है कि राजनीति हर जगह है, बहुत बुरी है। अगर इंसान आगे बढ़ रहा होता है तो उसको कहते हैं ना कि लैग पुलिंग की जाती है, उसको बढ़ावा नहीं मिलता। आपने जो बात रखी कि एक इलेक्ट्रीशियन को तनख्वाह बहुत ज्यादा मिलती है, एक सफाई कर्मचारी का वहां सम्मान होता है, मैं समझता हूँ कि अब हिंदुस्तान में भी समय बदल रहा है।
1: जी,
0: शायद हो सकता है कि पुरानी सरकारों ने कुछ किया, वर्तमान सरकार कुछ कर रही है और आने वाले समय में पिक्चर चेंज होगी। हिंदुस्तान में 5 से 7 साल पहले सर हमने नहीं सुना था, हम जरूर सुनते थे किताबों के माध्यम से कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है।
1: जी,
0: आज एक मूवमेंट चल रहा है, एक अभियान चल रहा है, स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत। तो लोगों की सोच बदल रही है।
1: बिल्कुल,
0: और ये सोच बदलना वाकई बहुत जरूरी है।
1: देखिए, जब लोग बाहर जाएंगे, जब बाहर जाके, अब पहले दुनिया में बहुत कम लोग बाहर जाते थे।
0: जी,
1: अब आज इंटरनेशनल एयरलाइंस इतनी सस्ती हो गई हैं कि बाहर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। तो बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, और जब कोई भी इंसान बाहर जाता है और वो बाहर की रहन सहन को देखता है तो वो ये सोचता है कि ये जो बाहर हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं, ये सवाल आता है। दूसरा सवाल ये आता है कि जब बाहर जाते हैं तो चाहे वो हम इंडियंस हों चाहे किसी और कंट्री के लोग हों, सारे एक ही रूल फॉलो करते हैं और सारे बड़े तमीज से वो रूल फॉलो करते हैं। तो रूल ऑफ लॉ है
0: बाहर
1: बाहर हिंदुस्तान में भी रूल ऑफ लॉ है लेकिन दिखाई नहीं देता अक्सर कि जिसका जिसका जो मन कर रहा है वो
0: कर रहा है। जी जी, आपने तो बिल्कुल बात ऐसी कह दी कि इस बात से एक और बात छेड़ने का मन कर रहा है कि अगर आप जनपद की तरफ जाते हैं तो रूल्स वहां आपको दिखाई देगा।
1: जी,
0: जैसे आप पिछड़े इलाकों की तरफ चले जाएं जहां मतलब कानून का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे कि गाड़ी में किसी ने बेल्ट नहीं पहनी है या ओवरटेक गलत दिशा से कर रहा है या रेड लाइट को फॉलो नहीं कर रहा है। तो कहने का आशय लिसनर्स यही है कि हमें हर जगह अपनी समझदारी का परिचय देना होगा। जहां आप अपनी समझदारी का परिचय देते हैं तो आपके व्यक्तित्व की पहचान होती है और जिसकी वजह से उस इंसान से हर कोई मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। यही एक वजह है कि अमित बैजल साहब से बात करकर मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है और यहां उनकी बातों के माध्यम से मैं ऑस्ट्रेलिया को देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं कि किस तरीके का माहौल है, किस तरीके के माहौल में लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और लता जी की आवाज में कोई गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो या हम ही खुद प्ले कर दें,
1: आप ही खुद प्ले कर दें।
0: चलिए, तो लता जी का खूबसूरत गाना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सुरशादा 90.8 एफएम पर। जिंदगी में खुश रहने के लिए म्यूजिक एक ऐसा जरिया है कि जिसकी वजह से आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तो इसलिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। शारदा विश्वविद्यालय का ये एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। जाहिर सी बात है कि शारदा विश्वविद्यालय में दूर दराज से शिक्षा लेने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, अपने आप को तराश रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जैसे कि सर ने कहा कि खुद से सवाल करिए, खुद का आकलन करिए। अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो एक अच्छे काउंसलर से आप मिलिए, अच्छे एजेंट से आप मिलिए जिनके पास लाइसेंस है। अगर गलत व्यक्ति से मिलेंगे तो मैं समझता हूं कि उस पद्धति से, उस पेशे से हमारा विश्वास भी उठता चला जाएगा। इसलिए जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीजा इन्फो के संस्थापक ऑनर अमित बैजल साहब। तो बैजल साहब, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: ये बातें मैंने गांठ बांध ली और यही वजह है कि मैं अपने श्रोताओं तक रिपीट करके वो बातें पहुंचा रहा हूं कि हमें ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सर, मुझे बात करके वाकई बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए भी सीखने समझने की ये बातें हैं। फाइनली एक संदेश जो आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहते हो, हमारे पेरेंट्स के लिए कहना चाहते हो, हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए कहना चाहते हो, आप चाहते हो कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम सुधर रहा है या इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया में 20 साल का लगभग समय गुजारा है, तो फाइनली एक संदेश आपकी तरफ से क्या होगा?
1: देखिए, मैं यही संदेश दूंगा अपने श्रोताओं को, खासकर उन श्रोताओं को जो अब या तो 12वीं की परीक्षाएं दे चुके हैं और बाहर जाने की तैयारी में लगे हैं, या उन श्रोताओं को जिन्होंने ग्रेजुएशन ख़त्म करी है और अब अपनी ज़िंदगी में क्या करना है उसके बारे में सोच रहे हैं, कि आप सभी लोगों को सबसे पहले एक अच्छे काउंसलर और अच्छे लाइसेंस्ड एजेंट की ज़रूरत है। आप उनके साथ जो भी बात करें, राइटिंग में करें, ओरली कोई बात उर्दू जबानी की बात नहीं होती है। जो भी आपको प्रॉमिस किया जा रहा है, जो भी आश्वासन आपको दिया जा रहा है, चाहे वो आपका एजेंट दे रहा है, चाहे वो कोई भी दे रहा है, वो हर एक आश्वासन को आपको पेपर पे लिखवा के लेना जरूरी है। अगर आपको वो देने के लिए तैयार नहीं है, आप अपना एजेंट बदल दीजिए, क्योंकि जो सच बोलता है वो लिखने के लिए कभी मना नहीं करेगा, और जो आपको सिर्फ मार्केटिंग कर रहा है वो क्लिक के कभी नहीं देगा। तो एक तो आप इस कसौटी पे हर एक एजेंट को तोलना शुरू कीजिए। दूसरा आपको मैं ये कहूंगा कि अपनी तैयारी कीजिए, अपना लक्ष्य बांधिए। आपको अपनी जिंदगी से चाहिए क्या, जैसे मैंने कहा कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट तक का रास्ता क्या आप को पता है, और अगर पता है तो किसी कंसल्टेंट के पास, जैसे हम लोग होते हैं, आप हमारे पास आइए, हमसे बात कीजिए, हम आपके साथ आपकी बात करेंगे, आपको समझेंगे, और उसके बाद आपको हम आपको आपका सलूशन भी आपके सामने रखेंगे, और हो सकता है कोई और सलूशन जो बेटर सूटेड हो वो भी आपके सामने रख सके। ये हमारा प्रोफेशन है। अब आप जब हमारे पास आएंगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ समझने को मिलेगा, जो मैं आपको इतने छोटे प्रोग्राम में तो नहीं सिखा सकता।
0: मैं वही जानना चाह रहा था कि फाइनली मैं इसी बात पर आता कि कोई अगर आपके पास आना चाहता है, आपसे संपर्क साधना चाहता है, तो वो क्या माध्यम होगा?
1: देखिए, वीजा इन्फो आज की डेट में गूगल देवता हमें हर एक चीज का दर्शन करा देते हैं। तो आप वीजा इन्फो ऑस्ट्रेलिया टाइप करेंगे तो आपको हमारा फेसबुक पेज भी मिलेगा, आप वीजा इन्फो टाइप करेंगे तो आपको हमारे ऑस्ट्रेलियन ऑफिस का एड्रेस भी मिलेगा, हमारा ईमेल एड्रेस भी मिलेगा। मेरा नाम अमित है, amit@visainfo.com.au पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी सवाल है आप मुझे बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना आपके श्रोता आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हम तक उनकी
0: आवाज पहुंचाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: रियली नाइस टॉक टू यू सर। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके भविष्य के लिए, आपकी कंपनी के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद, धन्यवाद।
0: सो लिसनर्स, आप थे हमारे साथ अमित बैजल साहब, जो कि संस्थापक हैं वीजा इन्फो के। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। हम तो बस यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, गुरुओं का सम्मान करते रहिए, क्योंकि ये सम्मान जब आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप उनसे बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा बताना ना भूलेगा। बस मुझे दीजिए अनुमति, जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की कोई जरूरत। सुनते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार,
1: धन्यवाद।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here. She likes to drop it low, man.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: तुम ना शादी के बाद भी ऐसे ही रहना, बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है।
2: अरे वाह, आज तो एकदम शाहरुख खान निकल रहा है।
1: सच्ची?
2: हाँ।
1: ये ऐसे? हाँ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। 9:07 हो चुके हैं, 11 तारीख है, हमारे आसपास के खास उसके बारे में जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:10 हो चुके हैं। 11 तारीख है और ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से हर रोज की तरह यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, दूसरों की सेहत का ख्याल रखें। दूसरों की सेहत से मेरा मतलब यह है कि जब आप ऑन रोड आते हैं तो छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हाँ, यहाँ तक कि हम एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे होते हैं। हाँ, ये भी अक्सर बहादुर ने नोटिस किया, हमने भी नोटिस किया। और क्योंकि कल मदर्स डे गया है तो उस दौरान हमने देखा कि हमने एक दूसरे की माँ पर, बहन पर सम्मान के साथ प्यार लुटाया है कि आपको मदर्स डे की शुभकामनाएं, आंटी जी आपको हैप्पी मदर्स डे वगैरह वगैरह। लेकिन हम दूसरे तीसरे दिन या आगे पीछे देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर हम अपनी माँ बहन को भी शामिल कर लेते हैं, जो कि ये शिष्टा कहते ना, शिष्टाचार वाला व्यवहार नहीं है, ये अच्छा तरीका नहीं है। अगर आप किसी से गुस्सा है, नाराज़ हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं कि देखिए, मैं आपसे नाराज़ हूँ और मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन जब गाली गलौज करते हैं तो ये शर्मिंदगी महसूस आपको होनी चाहिए और ये सब दिखाता है कि आप किस माहौल से आते हैं और परवरिश कैसी हुई है। शाबाश मेरे लाल, कितनी अच्छी बात कह दी सीधे सच्चे तरीके से। एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम खुशनुमा माहौल बनाकर रखें, एक दूसरे का सम्मान करें और आगे बढ़ते रहें। अगर ट्रैफिक लगता है तो मेट्रो एक अच्छा सीधा सच्चा सरल आसान साधन है। दिल्ली NCR की अगर हम बात करें तो दिल्ली NCR में पूरा जाल बिछ चुका है और गगन भी सुबह सुबह जल्दी जल्दी झिलमिल से आए। झिलमिल से तारों, नहीं नहीं, अंताक्षरी थोड़ी करनी है। अच्छा, मुझे लगा गाना झिलमिल से आगे डार्लिंग से गाए, गाना है। ब्यूटीफुल ट्रैक। कल एक खास दिन है, उसके बारे में जानेंगे जरूर। शारदा विश्वविद्यालय के लिए, SSMFE के लिए। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। सात खून माफ, आज हो सकते हैं जेल हो जाएगी। अच्छा, फिल्म का नाम है सिर्फ।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ताज़ा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
2: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
1: क्या है राज?
2: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ। दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
3: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज चुके हैं 9:19 हो चुके हैं, 11 तारीख है और वक्त हाथ से रेत की माफिक फिसलता जा रहा है। इसलिए वक्त पर सारे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। अक्सर हमने लोगों को देखा कि काम वक्त पर यानी कि कल के लिए टाल देते हैं। जब काम इकट्ठा हो जाता है तो दिक्कतें परेशानियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कई लोग स्मार्टली वर्क करते हैं यानी कि काम को तुरंत कर देंगे, तुरंतान महाकल्याण, उसके बाद आप फ्री हो सकते हैं, उसके बाद आप बेफिक्र हो सकते हैं। लेकिन जैसे आपकी काम को टालने की प्रवृत्ति बनती चली जाएगी तो दिक्कतें परेशानियां पहाड़ की तरह आपके सामने बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। फिर पसीने छूट जाएंगे गर्मी में। अब हम करेंगे गर्मी में अब हम करें क्या, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बातों बातों में बात निकल कर आ चुकी है कि दिल्ली एनसीआर का टेम्परेचर यानी कि तापमान क्या है। दिल्ली में आज आसमान साफ रहने का अनुमान है और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ग्रेटर नोएडा यानी कि आज मौसम गर्म रहेगा। ग्रेटर नोएडा के आसपास के इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ और अधिकतम मैक्सिमम जो टेम्परेचर जाएगा वो जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। वायु गुणवत्ता सूचकांक जिसको हम हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। हाँ, अंग्रेजी में बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना रहेगा बेटा, 155 के साथ खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। वहीं गाजियाबाद में धूप खिली खिली हुई है और तापमान काफ़ी अधिक महसूस किया जा रहा है। सच बात तो है कि सुबह से ही हमें गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश, शिमला, मनाली और कांगड़ा में भारी बर्फबारी और बारिश का अनुमान है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। सोचो कितना मौसम बदल रहा है, पहाड़ों पर बर्फबारी। हे प्रभु, मैं कहाँ जाऊँ? मंगल ग्रह चलते हैं। पैसा तुम देना आई हो। ब्यूटीफुल ट्रैक, नहीं हैंडसम भी हो सकता है। नहीं, मेरे को ब्यूटीफुल के आसपास रहने में बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात है, सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम। ये है ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो आपको हमेशा अप टू डेट रखता है ज्ञान विज्ञान पढ़ने पढ़ाने और लेटेस्ट जानकारी के साथ। सो डोंट गो एनीवेयर, हाड़ी संडू की आवाज सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं और लगन गड्डी पूरे होश आवाज में चलाएगा।

0: कंगना।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था, मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
7: हाय मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जब कुछ कहते हैं तो निश्चित तौर पर उसका जो असर है धरातल तक पड़ता हुआ नजर आता है और अभी एक ऐसी ही बात सुनने को समझने को मिली तो निश्चित तौर पर इसके बारे में सुनना समझना बहुत जरूरी है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि हमें देश हित में तय करना होगा कि साल भर तक घर में कोई भी कार्यक्रम हो हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। वो ये भी कहते हैं कि कोरोना काल के दौरान हमने वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी व्यवस्थाओं को अपनाया था। धीरे धीरे हम इनकी आदत भी डाल चुके थे और आज समय की मांग है कि हम उन व्यवस्थाओं को फिर से प्राथमिकता दें। एक खबर के अनुसार जो कहा गया है वैसी मैंने पढ़ के आपके सामने वो बातें रख दी। अब इस बात का आशय क्या है? आशय ये है कि बात निकलकर यूं कहें कि सामने यूं आ रही है कि पेट्रोल डीजल हमें बचाना है वर्क फ्रॉम होम जब हम करेंगे और मिडिल ईस्ट में यूं कहें कि जब युद्ध का माहौल चल रहा है, लड़ाई झगड़े चारों तरफ हो रहे हैं, पड़ोसी देश में जंग चल रही है, रूस यूक्रेन का हो और अभी ईरान अमेरिका वाला सीन हो, तो फर्ज बनता है कि यूं कहें कि हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम ईश्वर से तो प्रार्थना करते ही करते हैं कि कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये भारत की सनातन धर्म की जो सोच है, संस्कृति है, बहुत अच्छी है और इसमें हम सबका भला है। और यकीन मानिए कि जब दूसरे देशों में कहीं कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं या युद्ध जैसे हालात होते हैं तो उसका फर्क विश्व के बैठे किसी एक कोने में एक व्यक्ति पर जरूर पड़ता है और ऐसा फर्क हमें दिख रहा है तो दिक्कतें परेशानियां हो सकती हैं। सो प्लीज समझदारी से काम लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जब आप गाड़ी से आ रहे हैं तो 4-5 लोग शेयर करके अपने ऑफिस पहुंच सकते हैं, जैसे कि हम लोग आते हैं फ्रॉम फरीदाबाद टू ग्रेटर नोएडा।
3: नहीं, मच्छर ज्यादा है, मच्छरों से अपने आप को बचा के रखो, शायद इसलिए नहीं आए होंगे।
2: मनोरंजन के लिए सिर्फ ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल योर सुरशादा 90.8 FM। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: अभियान।
1: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए niksha.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरु शादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज चुके 9:40 हो चुके हैं, 11 तारीख है और क्या अपडेट है उसके बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। बात निकल कर ये सामने आ रही कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET UG 2026 की जो परीक्षाएं वो आज से आयोजित की जा रही हैं और 31 मई तक ये परीक्षाएं चलेंगी। और उससे पहले NTA ने गाइडलाइन जारी कर दी कि ऐसे में परीक्षा देने से पहले छात्र एक बार जान लें, पढ़ लें ताकि परीक्षा केंद्र पर किसी भी परेशानी का सामना उनको न करना पड़े। अक्सर हमने ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है कि कहते हैं ना कि अरे यार वो मैं ये भूल गया, एडमिट कार्ड भूल गया, एंट्रेंस कार्ड भूल गया, मेरे पास ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, लेट पहुंचे वगैरह वगैरह। तो ये आपको खुद तय करना है, आपको अपना भविष्य बनाना है या बिगाड़ना है। साल भर की ये परीक्षा होती है, साल भर से बड़ी बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे होते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद जब ये सुनने देखने को समझने को मिलता है तो बहुत बहुत बहुत बुरा लगता है। सो प्लीज अपने आप को तैयार कर जाएगा ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो और आने वाले समय के लिए बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और परीक्षा पर चर्चा अक्सर आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की देखी है, सुनी है, समझी है। डरने घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। कहते हैं कि जब समझदारी से काम लेते हैं, आपने साल भर पढ़ाई की है तो फिर डर काहे का। एक खबर को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इसके बारे में बात कर सकते हैं, कितना सच है कितना झूठा। नीट 2026 लीक की आशंका बढ़ती हुई नजर आ रही है तो इसके बारे में भी मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। आई होप कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो क्योंकि जब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है तो दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं हमारे सामने। चलिए वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले जिंदगी में आप ब्रेक लेना चाहते हैं, एक कैंपस की तलाश है, यूनिवर्सिटी आप चाहते हैं तो शारदा विश्वविद्यालय आप आइए। एक बार जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ ही के होकर रह जाएंगे क्योंकि 12th का रिजल्ट आउट हो चुका है और आप एंट्री करना चाहते हैं कैसे अच्छे कैंपस में तो शारदा विश्वविद्यालय इज हियर। इसलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर। ब्यूटिफुल ट्रैक, नेहा कक्कर की आवाज, पूर्णी, मेड इन चाइना फिल्म का ब्यूटिफुल ट्रैक। All you Suru Shada 90.8 FM, good morning, मैं हूँ गगन आपके साथ।
1: मजा मा के ओढ़।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

श्रेया घोषाल की आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल योर सुरशादा 90.8 एफएम। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। सच बात तो ये कि जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और तनाव से आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो इसलिए एक्सरसाइज भरपूर करिए, नींद भरपूर लीजिए, ना किसी को तनाव दीजिए, अच्छा खान पान रखिए, अच्छी सोच रखेंगे तो निश्चित तौर पर खुशियां आपके आसपास होंगी, खुशियां आपके दामन में होंगी। चलिए हंसते मुस्कुराते आप आगे बढ़ते रहिए और सच बात तो है कि जिंदगी का सरल जो सफर है वो सरल सुगम आसान हो जाता है, लेकिन कभी कभी दिक्कतें परेशानियां आपके सामने आ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हताश होकर परेशान होकर बैठ जाएं। कोशिश करिए, मेहनत करिए, फिर से खड़े हो जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। जैसे कि बात सामने आती है कि आपने कोई परीक्षा दी, परीक्षा के दौरान आपके मार्क्स अप्स एंड डाउन्स रहे, आप अच्छी तरीके से क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं कि यार क्या होगा, कैसे होगा वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत संयम के साथ, नियम के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों का आप लोग ध्यान रख पाएंगे। बहुत सोचने की समझने की आवश्यकता है कि क्या करें क्या ना करें, है ना। एक प्लान बनाइए, आने वाले समय में कुछ और परीक्षाएं आपके सामने आने वाली हैं, है ना। प्लान के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। एक स्ट्रैटेजी जिसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजी प्लान, और अपने सीनियर से भी आप पूछ सकते हैं, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़िए, लोगों से डिस्कस जरूर करिएगा, मन की बात मन में मत रखिएगा वरना दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। ग्रेटर नोएडा में क्या खास है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो बात निकल कर ये सामने आ रही है कि न्यू नोएडा का विकास यानी कि 80 गांवों को मिलाकर बनने वाले न्यू नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें किसानों को 4300 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा मिलेगा। और मेट्रो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट को दिल्ली से सीधे जोड़ने के लिए 4 नए मेट्रो स्टेशनों वाले कॉरिडोर की योजनाओं पर काम चल रहा है। तो आने वाले समय के लिए लख लख बधाइयां, बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा।

0: मी हमारे साथ होंगे।
1: अरे इजी इजी कुछ नहीं, बड़ी मेहनत चली, साल भर की हमने मेहनत की तब जाके ये मुकाम पाया है।
0: क्या बात है इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ। कल होगी फिर आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लिसनिंग टू शारदा 90.8 एफएम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की आवश्यकता, और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। नमस्कार।
2: I'm looking for answers and the meaning behind it. I'm taking a chance here.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
1: तो अभी चलो।
3: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो शारदा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं, और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी यह है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं, जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं, जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा, और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं, और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव, यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड्स सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है, जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहाँ खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: तो है तूफान मेल, क्लास में सबसे आगे, खेल में रहती नंबर वन, दिमाग भी सरपट भागे। और एक है थकान मेल, थकी रहती हरदम, खेल में रहती पीछे वो, पढ़ाई में भी नंबर कम।
1: कहीं थकान मेल को अनीमिया तो नहीं? अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
0: जब से ली थकान मेल ने नियम से आयरन की गोली, चुस्ती फुर्ती आई उसमें तूफान मेल वो भी होली।
2: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। किसान मित्रों, आजकल अधिक उत्पादन के लिए खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे हमारी खेती में बहुत ज्यादा लागत आ रही है और जल, वायु, भूमि, साथ ही हमारा जो वातावरण है वो भी प्रदूषित हो रहा है। और इसके साथ ही जो खाद्य पदार्थ हैं जो हमको खेती से मिलते हैं वो भी जहरीले हो रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार की सभी समस्याओं से निपटने के लिए जैविक खेती करने की जो सिफारिश है हमारे कृषि वैज्ञानिक आजकल आपसे कर रहे हैं। भारत सरकार भी जैविक खेती को अपनाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है, साथ ही राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन भी चला रही है, जिसके अंतर्गत जैविक खेती करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है और जैविक खेती करने के तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं। किसान मित्रों, रासायनिक उर्वरकों के बहुत ज्यादा प्रयोग से हमारे जो खेतों की मिट्टी है उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो दिन प्रतिदिन नष्ट होती चली जा रही है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बचाने में जो जैविक खाद है वो काफी कारगर है। तो किसान मित्रों, जैविक खेती करके आप भी कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए बस जरूरत है आपको जागरूक होकर जैविक खेती करने के तौर तरीकों से भली भांति परिचित होने की। किसान मित्रों, जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती है, साथ ही हमारे किसान भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है, क्योंकि जब लागत कम होगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो आमदनी है वो बढ़ेगी। और किसान मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप जैविक खेती करेंगे और जैविक खेती करके जब कोई भी फसल आप प्राप्त करेंगे उसको बाजार में ले जाएंगे तो उन जैविक उत्पादों का बाजार में बहुत ज्यादा मूल्य आपको प्राप्त होता है, क्योंकि आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसको शुद्ध अच्छी चीज मिले ताकि वो स्वस्थ रहे। और किसान भाइयों, आपको बता दें कि आज के आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती करना बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो किसान मित्रों, आप भी जैविक खेती करें ताकि हमारा जो भारत है वो स्वस्थ बने, शक्तिशाली बने। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही जैविक खेती की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान।

अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान से ये रागनी। किसान मित्रों, खेती में बागवानी तेजी से उभरता हुआ कृषि व्यवसाय है। इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है। जो हमारे युवा साथी हैं, जो रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, वो बागवानी में रोजगार हासिल कर सकते हैं। बागवानी अपने अंदर तमाम संभावनाएं समेटे हुए है, जो हमारे किसान भाइयों के लिए भविष्य में सुनहरे आय का एक साधन बन सकती है। किसान मित्रों, कुछ सालों में बागवानी फसलों के उत्पादन में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। फल सब्जी की मांग बाजार में साल भर रहती है। पारंपरिक फसलों में बढ़ते नुकसान और कम होते मुनाफे के मद्देनजर अब हमारे किसान भाई बागवानी की ओर बढ़ रहे हैं। और हम वर्तमान समय की बात करें तो देश के बहुत से हमारे ऐसे किसान भाई हैं जो बागवानी करके अच्छी खासी आय प्राप्त कर रहे हैं। खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा बागवानी में हमारे किसानों को अधिक आय के साथ ही विभिन्न प्रकार के फायदे हैं। खाद्यान्न फसलों के उगाने के लिए पर्याप्त भूमि की आवश्यकता होती है, जबकि बागवानी का कार्य आप कम भूमि पर आसानी से कर सकते हैं। बागवानी फसलों की सहायता से हमारे किसान भाई अपनी कम भूमि पर भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार एक मिशन भी चला रही है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। और इस मिशन के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को बागवानी फसलों के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही किसान मित्रों, आपको बता दें कि शहरों में सब्जी की खेती एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें रोजगार के अवसरों की वृद्धि हो रही है। शहरी कृषि में सब्जी की खेती से न केवल शहरों में ताजी सब्जियों की आपूर्ति होती है, बल्कि ये रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। तो किसान मित्रों, आप भी बागवानी करके अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं और अपने जीवन को, अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही बागवानी की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं लोकेंद्र सिंह।

0: हाँ बिल्कुल।
1: द प्रोग्राम्स अंडर शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट आर डिजाइन टू इनेबल स्टूडेंट्स टू डेवलप स्किल्स टू थिंक अबाउट आर्टिस्टिक एंड कल्चरल इंटरवेंशंस क्रिटिकली।
2: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे यानी कि ये 5 जूस। वो कौन कौन से 5 जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए 5 हेल्दी जूस जरूर पिएं। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में, तो बात सामने

0: बताती है कि अदरक का जूस एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है। इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: गगन खोखरी, फतेह, हार्ट बीट।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: पाँच से नौ साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक गुलाबी गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: जिया चले जा चले

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नाम तो सुना ही होगा।
2: राम राम दोस्त राम, सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रही हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इससे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
3: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल है, आप इसे कैसे देखती है?
4: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, हम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। AI एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
3: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं?
4: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये AI का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुठलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
3: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज ए इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
4: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती है। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है ये हमारे हमारे अंदर, ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है, वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
3: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर, कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे बड़े नाम कहानियां बदल जाती है लेकिन कम्युनिटी छोटा सा प्रदेश, उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
4: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म नहीं, बिकॉज रेडियो इंपैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इंपैक्ट क्रिएट कर सके, और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलेवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
2: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरुशादा 90.8 एफएम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM।
1: Hi everyone, this is Dania Joshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मैडम यू कैन बी वेरी फंडा।
2: केटो डाइट का नाम सुना है? आज से ये सब बंद और वो शुरू।
3: अरे बीबी जैसी पहले थी वैसी फिट हो जा।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Solo Sharda.
5: तुम्हारी सरकारी नौकरी पक्की हो गई है।
6: अरे मम्मी, सरकारी नौकरी लग

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Hi, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
2: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं, सुनो शारदा at 90.8 FM.

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
6: मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कृपया आप रास्ता देंगे?
7: प्लीज।
6: थैंक यू।
8: वर्षा जी कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो।
6: तुम्हें कुछ भी हो जाए मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चों कौन हूँ मैं।
8: अली का शरारती है। वो तो ऐसे मजा करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: अरे हम बोल रहे हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
3: माँ जी मुझे टीबी है।
2: टीबी और छुपा कर रखा?
3: माँ जी मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें।
2: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
5: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने

0: युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं, तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: I'm sorry, Nami. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
1: It's over. अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती।

0: दुष्यंत, मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
1: सो व्हाट, मैं काम में बिजी था यार, तुम मुझसे मिलना चाहती थी, मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो।
0: यू नो शेम, इट रियली हर्ट्स। एनीवे,

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: 10 से 19 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं, जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा, तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
3: हाय, मैं उरण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Nayi dulhan to bilkul chand jaisi hai.
2: काकी आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
1: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
2: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
1: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
3: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
7: बिल्कुल सोचा है पापा।
6: क्या सोचा है?
7: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
6: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
7: जी पापा।
6: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
7: हाँ पापा बिल्कुल।
8: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
9: So where are you? The world is here at Sharda University.
10: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और